0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर

जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साड़न, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी

0: बात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद

0: परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, PM मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे PG का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जाँच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key

0: हिचकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे राजशेखर ने से लिखा था और जैस्लिन रॉयल का संगीत था। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, हर साल 8 सितंबर को। हम सभी जानते हैं साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ना लिखना और जानना। पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और बहुत सारे कार्य करने योग्य बन जाता है। लेकिन सही अर्थों में जानना तब होता है जब हम ज्ञान और विवेक यानी सही गलत की हमें पहचान होती है। जो लोग साक्षर नहीं है उन्हें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है और आजकल तो पढ़ने लिखने के साथ साथ संवाद करना, टेक्नोलॉजी और तमाम उपकरणों का ज्ञान भी साक्षरता में शामिल हो गया है। यानी सबका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितने की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को साक्षर बनाना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या उनकी पढ़ाई में कोई आर्थिक परेशानी आई या कोई और परेशानी आई। उन सब की हमें मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का यह भी उद्देश्य है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने और समझने का अवसर प्राप्त कराया जाए, महिलाओं और वंचित वर्गों को साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना ये भी एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों की येन केन प्रकारेण मदद करें जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। और आज की जरूरत है मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और डिजिटल भुगतान, और ये सभी आज की जरूरत है। इन सब जैसी जरूरी चीजों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है और इस दृष्टिकोण से ताकि उनमें हीन भावना ना आए। ऐसे भाव से हमें सबको बताना चाहिए और जिस भी प्रकार से मदद की जा सके करना चाहिए।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा।

रिट्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाजों में स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था। साथियों, साक्षरता का अर्थ केवल ये नहीं कि अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें या पढ़ाई कर लें, किताबें पढ़ लें, उसे अपने जीवन में सही मायने में उतारना ही साक्षरता सही मायने में सिद्ध होता है। अब धुरंधर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी गोपी सुंदर और शिप्पा दा की, श्री प्रदा की आवाजें थी, और अमिताभ भट्टाचार्य के ये बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। अपनी जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज जन्मदिन है। सुरों की मल्लिका, जिन्होंने हर भाव को संगीत में व्यक्त किया, एक ऐसी आवाज जिसने 7 दशकों तक संगीत को संवारा, उनके जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आशा भोसले के बारे में विस्तार से जानकारी सुनेगा 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। सुनना न भूलेगा।

सन्नू मलिक के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। जब उन्होंने ये गीत गाया तो उस समय उनकी उम्र यानी कि उस उम्र में ये गाना बहुत ही खास है, क्योंकि इस गाने में जिस संगीत की और सुरीली आवाज के साथ इसे बड़ी ही गहरे और भावपूर्ण से इस गीत को गाया है, इस गीत ने सभी दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत दर्द और अकेलेपन को बयां करता है और ये बहुत ही सुंदर सा गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र FM बँड 101.5 MHz वर।
2: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
3: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी।
2: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज, घरकुल मसाले आणा आज।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे फनकार की बातें जिनकी आवाज, जिनका स्वर सुनकर समय जैसे थम जाता है और

एक ऐसी आवाज जो मन की वादियों को एक अजीब सा सुकून देती है, एक ऐसी आवाज जो सारी दुनिया की आवाज है, जो अपने लोक रंग की वजह से दुनिया भर में

जानकार कार्यक्रम आज डॉक्टर भूपेन हजारिका पर केंद्रित है। डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था सदिया असम में। उनके पिता नीलकांत हजारिका और माता शांति प्रिय हजारिका थी। बचपन से ही उनकी माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। माँ की लोरियों के साथ धीरे धीरे वो असम के लोक संगीत से परिचित हुए। सन 1929 में उनके पिता गुवाहाटी में आकर रहने लगे और सन 1932 में डॉक्टर भूपेन हजारिका का परिवार धुबरी आ गया। इसके बाद ये सभी लोग तेजपुर आ गए। तेजपुर में ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा ने भूपेन हजारिका की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। सन 1936 में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना कोलकाता में रिकॉर्ड किया।

दादाएं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में और उसके बाद धुबरी के सरकारी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1942 में उन्होंने कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, बाद में बीए और एमए किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। थोड़े दिनों तक डॉक्टर भूपेन हजारिका गुवाहाटी के आकाशवाणी केंद्र में काम करते रहे। जल्दी ही उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिल गई और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क सन 1949 में। सन 1952 में डॉक्टर हजारिका ने अपनी पीएचडी पूरी की। अमेरिका के दिनों में भूपेन हजारिका पर वहां के संगीत का खास प्रभाव पड़ा। ये वो दिन थे जब अश्वेत संगीतकार पॉल रॉबसन अमेरिकी श्रमिक जनता की आवाज बन चुके थे। पॉल रॉबसन ने मिसिसिपी नदी और उसके आसपास काम कर रहे मजदूरों की व्यथा को जोड़कर अपना एक कालजयी गीत बनाया, ओल्ड मैन रिवर। ये गाना मिसिसिपी नदी और मजदूरों की महागाथा बन गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका को फौरन अपनी नदी गंगा याद आई, अपना देश याद आया और बहुत ही भावनात्मक पलों में उन्होंने एक गाना लिखा, गंगा बहती हो क्यों। मूल रूप से इस गाने की रचना बांग्ला में की गई थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे हिंदी में तैयार किया और ये रचना आज जनता के दिलों का स्वर है।

डॉक्टर भूपेन हजारिका दरअसल आम जनता की आवाज है, खेतों में काम करते मजदूरों की आवाज है, चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़कर अपनी पीठ पर लटकी टोकरी में जमा करती स्त्रियों की आवाज है। वो इस देश की नदियों, इस देश के पहाड़ों, इस देश की हवा, इस देश की संस्कृति, इस देश के नृत्य की आवाज है। डॉक्टर भूपेन हजारिका हमारी आवाज है।

सन 1970 में डॉक्टर भूपेन हजारिका की मुलाकात कल्पना लाजमी से हुई। उन दिनों में कल्पना लाजमी एक पल नामक फिल्म बना रही थी। इस फिल्म के संगीत का जिम्मा डॉक्टर हजारिका को दिया गया और इस तरह तैयार हुए कुछ अद्भुत गाने।

डॉक्टर हजारिका ने कई फिल्मों में संगीत दिया। सन 1973 में फिल्म आरोप में उन्होंने माया गोविंद के इस गाने को स्वरबद्ध किया था।

सन 1997 अमोल पालेकर की फिल्म दरमिया। डॉक्टर हजारिका के फिल्मी गीत जितने लोकप्रिय हुए उससे भी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं असम और बंगाल के इलाके में उनके गैर फिल्मी गीत और उनके

भूपेंद्र हजारिका को सन 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1977 में पद्मश्री मिला। सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1992 में वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी ने साल 2008 में उन्हें अपनी फेलोशिप से नवाजा था। डॉक्टर हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा। वे शारीरिक रूप से भले ही इस संसार से कूच कर गए 5 नवंबर 2011 को, लेकिन उनका स्वर, उनकी लेखनी हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे।

जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से मिलती जुलती है और कितनी मिलती है। और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं पहले से ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इबारत नहीं पढ़ी है। इबारत कुछ इस प्रकार थी। शाम की हल्की हवा में उसकी चुनरिया सरक रही थी। वो रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो दूर से उसे चुपचाप देख रहा था। एक दिन उनकी नजरें मिली, वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। बस वहीं से एक खामोश रिश्ता शुरू हो गया। उसके चेहरे में वो जादू था कि उसे देखते ही दिल बेखुद हो जाता। उसकी आंखों में उसने सपने भी सजा लिए थे। एक दिन बारिश में उसने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींच ली। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी तस्वीर इतनी क्यों खींचते हो? वो बोला, तुमसे मिलकर न जाने क्यों तुम्हें तस्वीर में कैद करने का मन करता है। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो मुस्कुराया, ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद अब कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने मेरे दिल को इस तरह छुआ ही नहीं। जीते तो है सभी, मगर जिंदगी वही है जो किसी के साथ जीने का ख्वाब दे जाए। और उस शाम बेखुदी में उठे कदम एक ही राह पर आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ, तो इबारत हमने पढ़ दी है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। और आप अपने संदेश हमें भेजिए, साथ ही गीतों की लिस्ट भी भेजिए और हमारी बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शुरुआत इस गीत के साथ।

सिलसिला फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में, और शिव हरी का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हाँ सवाल जवाब जरूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नजरों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नजर से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग

दिलाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां है। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है। और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे, और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे। और मोटरबोट का सफ़र, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीज़ें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही है। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई, और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है, और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम में जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था सिलसिला फिल्म से, उस गीत के लिए काफी सराहना आई है और ये भी कहा गया है, हमारी श्रोता लिखती है कि काफी दिनों के बाद ये गीत उन्होंने सुना है और लिखती हैं कि ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सुरीला सफ़र में, ये आता तो दोपहर में है लेकिन इबारत की इबादत से पता चलता है कि इबारत भरी दोपहर में शाम की बातें हो रही है, नज़रें मिलती हैं, थोड़ी बहुत झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपके लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेंगी, ये भी अच्छी बात है। जो जहाँ है बस उसे इंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नववधु या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर महसूस होता है, तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा ठहरना भी जरूरी है और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत जरूरी होता है, ये पड़ाव बहुत जरूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होले से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है, और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं, और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतजार है आपके उन संदेशों का। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहां जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहां। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप जब पहुंच जाएं, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को सजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते, और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मज़ा आता, और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देख कर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसे

उस पल का इंतजार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आंख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफ़र निकल चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र निकल चुका है और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफ़र में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेष कर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है। और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी, आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा है इन सबको। जी हाँ, हमारे

चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेष कर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है। और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

0: परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: आगे रहे एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति NR बोरकर की एकल पीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में

0: यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
2: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ST बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: ना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के,
1: बंद रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
3: रात जी आ रही जी।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस टी बर्मन का संगीत।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: कर दी जाएंगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है,
1: बिल्कुल
0: महिलाओं को भी लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए।
1: बिल्कुल
0: और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगी। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
1: जी
0: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
1: दुनिया होती है।
0: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
1: जी
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
1: बिल्कुल, आपने बहुत
0: तो
1: सही
0: अगर
1: बात
0: वो
1: कही।
0: शिक्षित नहीं होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे।
1: जी, और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं और बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
1: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है, उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, व्यक्ति सफलता की और अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ, जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी हैं जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार, क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहाँ से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई, वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी, उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली, एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि वाघ की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्तां भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं
1: एक गाना।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं।
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी है जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ। उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है। मगर अब आज का जो जमाना है वहां

0: बच्चे कंप्यूटर के स्क्रीन पर अक्षरों के सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। ये सारी मैगजीन चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे, तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे। देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे, और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था, और देश दुनिया की जो होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या
1: कार्टून का भी रहता था,
0: तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकले लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही है फायदा हुआ ना कि कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए।
0: साथ में पढ़ने का शौक जी, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
1: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
0: वर्क पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पना

0: शीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताज़ा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ। विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है और यही शौक तेरे लड़के और अब पोती को भी है। पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए। तो बच्चों के पास उनकी उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए।
0: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके। बहुत कुछ किताबें देती हैं तो किताबों से बच्चों को जोड़कर

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया के समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट।

0: शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में,
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब
1: बिल्कुल
0: उनमें रुचि पैदा होगी।
2: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी के जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती है, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
0: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले,
2: क्योंकि
0: वो जो खुशबू होती थी पन्नों की, वो आकृष्ट किया करती थी।
2: मैं कहने वाली थी, और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका है।
0: और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे। तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूँ और बाकायदा 1, 2, 3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूँ, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट ना जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
2: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बाद ही में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे उस समय इंदौर में। पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में

0: से पहले फ्रंट पेज के मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट फंडा वगैरह वगैरह देखती हूँ।
1: सही बात है,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे।
1: बिल्कुल,
0: वो तो रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा।
1: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही करते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना है तो उसके पहले हम कितनी तैयारी

0: करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना, लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक एक कर देना, घर का घाट कर देना।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
0: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना, या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया। अंतर क्या है? कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि भी जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया।
1: मतलब जी तोड़ कोशिश करना।
0: जी
1: और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है, और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग
0: जी
1: करना। अच्छी बात है, सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की
0: बिल्कुल
1: जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित
0: जी
1: निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
0: बिल्कुल
1: बहरहाल ये बात बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई है, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो
0: जी
1: अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगूसराय, इश्क में मरजावां, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिस

0: वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
1: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम
0: जी
1: लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, टीचर टीचर नहीं खेला
0: जी
1: होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं। बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो
0: जी
1: उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता
0: जी
1: है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
0: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी,
1: हाँ
0: लेकिन जब ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की? जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
1: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा। और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था
0: जी
1: अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए। और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पे रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के
0: जी
1: दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको,
0: जी
1: दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
0: जी तो एक बेस बन गया आपका वहां काम
1: हाँ, बेस
0: करते
1: बन
0: करते।
1: गया,
0: जी
1: एब्सोल्युटली।
0: तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का
1: हाँ
0: जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी? किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा। क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम
0: जी
1: लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए,
0: जी
1: हम बिल्कुल बेघर हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया, कि मुंबई
0: अच्छा
1: इसलिए आऊंगा
0: जी
1: कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो
0: जी
1: होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित, मुल्क की अगर हम बात
1: हाँ,
0: करें?
1: मुल्क था और वो
0: जी
1: पार्टीशन पे ही था पूरा। और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत, ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया,
0: जी
1: मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस
0: जी
1: गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
0: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है, तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो। तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
1: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलोसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है
1: जी,
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद, जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो
0: जी
1: उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था। उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय, मैं ये दोनों शोज कर रहा था। ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा,
0: जी
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइप
0: टाइप
1: कास्ट कर
0: कास्ट
1: दिया जाता
0: जी
1: है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे, तो कभी भी
0: हाँ
1: फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा?
0: जी
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं, और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं, तो या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो

0: ग्रो कैसे करूंगा। तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो।
1: जी
0: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
1: जी, वो स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
0: सिर्फ उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
1: जी।
0: मैं मानता हूँ यूनिवर्स और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको, और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान देके प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा
1: जी। तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हूँ या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्री राम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ, मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक एक एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र मैं पहले ही से ही पढ़ चुका था, मैं उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था, और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूँ कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली आए,
1: आनंद फिल्म से।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे मतलब बस आते हैं कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट होती हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पे आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था, एक लंबा बहुत लंबा शूट आपने किया था,
2: मेरा जो
1: कितने घंटों का
2: पॉपुलर शो था माय का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था, तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
2: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए कम से कम 56-60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर, और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं।

0: मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम 1-2 दिन तक नींद से
1: और
0: उठा नहीं हूँ। तो ये
1: तब
0: बहुत,
1: तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए,
0: फिर
1: वापस
0: जब
1: शूट
0: ये 2 दिन मैं सोया हूँ उसके बाद वापस से
1: जी।
0: हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
0: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स
1: हाँ
0: अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे। मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी

0: करती है, और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं। क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है, और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
1: खुश होके तुरंत कि हमें
0: क्लब्स
1: सब
0: में
1: करना
0: जाते
1: है।
0: हुए या पार्टीज में जाते हुए, उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
1: कल क्या
0: बहुत
1: होगा कल
0: जरूरी
1: पूरा हाँ
0: चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी। और जैसे कि आप इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो है वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू कर दें। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार

0: होंगे, कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार
1: जी
0: मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं,
0: जी हाँ
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविज़न शोज़ की, और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहाँ भी हमारे इंडियन टेलीविज़न शोज़ टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
1: जी
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी
1: जी
0: मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज़ हुई। उसकी निर्माता निकोल एटेनडीगवे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफ़ी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें।
1: जी
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं
1: जी
0: चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारे इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए, और वो लोग बहुत खुश थे। मज़े की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पास ही में एक रेस्टोरेंट में, लैगोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
1: जी
0: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है
1: जी
0: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है, और जब मैं वहाँ गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
1: जी
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन
1: पहुंच गए
0: एक्टर वहां
1: जी
0: कैसे हूँ, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे, मतलब
1: यहाँ भी
0: यहाँ
1: फैन
0: के
1: फॉलोइंग
0: लोकल
1: है
0: लोग तुम्हें
1: जी
0: पहचान रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बींग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक
1: जी
0: इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट, और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा,
1: जी
0: मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली,
1: जी
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है, तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ,
1: जी
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब

0: थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो,
1: जी
0: ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो, ही वॉज प्लेइंग माई डैड इन दैट शो, इन दैट पायलट। व्हेन आई सॉ हिम, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मैं फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा, काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ पे राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई बढ़के।
1: तो वही सुन लेते
0: बिल्कुल।
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची,
0: बावर्ची तो
1: बावर्ची,
0: बस
1: एनी डे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे
0: हाँ बार
1: अपना
0: बार देखी जाती थी, बागबान
1: अपने
0: से
1: बर,
0: पहले ये देखी जाती
1: हाँ
0: थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग
0: स्टार
1: स्टार,
0: जी, उनका एक अलग ही चाम था। नमक
1: अलग ही
0: हलाल,
1: चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं
1: बिल्कुल,
0: कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।

0: बातें।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते
1: हाँ,
0: हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
1: ये
0: जा
1: सब
0: सकता है।
1: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
0: जी,
1: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है। तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
0: जी
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
0: जी
1: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रहना है,
0: जी
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
0: जी
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका
0: जी
1: विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: जी
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो
0: विनीत रैना
1: विनीत
0: बन
1: रैना है
0: जी
1: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
0: जी
1: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। शायद इतने साल से
1: देखिए,
0: काम
1: हमेशा
0: करते
1: तो
0: करते आपको ये
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है,
0: अच्छा
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
0: जी
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सेक्रीफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और
0: जी
1: ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
0: एक
1: मेंटेन करना
0: बैलेंस,
1: आसान रहता है।
0: जी और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
0: ठीक है,
1: क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है मैं आपको बताऊंगा।
0: बिल्कुल।
1: चांदनी

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: क्रश जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैं उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: पहुंचाता
1: हाँ
0: है गाना।
1: जी हाँ
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊं जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूं, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का, मुझे लगता है, सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
0: जी
1: उनके जितने भी ट्रैक

0: हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
1: जी
0: उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आर डी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहिरी,
1: जी
0: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया,
1: जी
0: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
1: चैन का
0: कहारे
1: रे
0: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
1: तो वही गीत यहाँ सुन भी लेते हम।
0: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हमें अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्म

0: सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: आम्ही आकाशवाणीच्या अमरावती केंद्रावरून बोलत आहोत 101.5 मेगाहर्ट्सवर। श्रोत्यांनो, सायंकाळचे 5 वाजता आहेत। शुभ संध्या। ठळक मराठी बातमीपत्र आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत। काही क्षणांची प्रतीक्षा।

का खोना बहुत जरूरी है, इश्क होना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है उनको पा लेना। पहले दिल का खोना बहुत जरूरी है, जिसके सीने में दर्द ठहरा हो उसका रोना बहुत जरूरी है। उनसे होती हैं ख्वाब में मुलाकातें, मेरा सोना बहुत जरूरी है। सिर्फ यादों से घर नहीं बनता, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है।

सुबह लिखूं या शाम लिखूं, हर खुशी को तेरे नाम लिखूं, तेरा जिक्र लिखूं, फिर तेरी फिक्र और हर दुआ में तेरा नाम लिखूं, ख्वाब लिखूं या ताबीर लिखूं, तेरे इश्क को अपनी तकदीर लिखूं, लिखकर खुद को हीर तेरी, तुझको अपना राजा लिखूं, फिर सोचा तुझे याद करना छोड़ दूं, सोचा तेरा इंतजार करना छोड़ दूं, दिल को समझाया बहुत, भूल जा उसे, दिल ने मेरे मुझसे कहा क्या चाहती हो, मैं धड़कना

इतनी मिलती है मेरे गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में ये तड़पता है। कैसे समझाऊं इस दिले नादा को जो मेरा होकर भी तेरे लिए धड़कता है, कि मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरे हर सवाल का जवाब हो तुम, चांद हो तुम मेरी हर रात का, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम, मुझको कुछ इस तरह याद हो तुम जैसे मोहब्बत की कोई किताब हो तुम। बर्बाद है हम तेरी मोहब्बत में और हमारे अंदर आबाद हो तुम।

तुम यूं ही ना मिला करो हमें मंजिल की राह में, हम रास्ते भूल जाते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर। तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जिसे मांगते वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा सुकून, तुम्हें खोना खुद को खोना, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी, तुम्हारी खामोशी मेरी सजा, तुम्हारी आवाज मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी राहत, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। तुम्हें चाहने में हमने हद की भी हद कर दी, वरना यूं ही कोई दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं करता। मुझे

तेरी आंखों को समंदर कहूं तो कम है, तेरी बातों को सुकून कहूं तो कम है, तेरी मुस्कुराहट को गुलाब कहूं तो कम है, तुझे क्या कहूं दुनिया जहां कहूं तो भी कम है, के रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तू कोई झील है झरना है घटा है क्या है, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है दिलासा है दुआ है क्या है, शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना जाने जा, अब तो रूह भी आपकी दीवानी होती

मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं माशूक फिल्म के गीत से। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है श्याम सुंदर ने, आवाजें अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की।

तरानी नए पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए धर्मात्मा फिल्म में मुकेश और कंचन को कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है इंदिवर ने।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं
0: हम एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गीत सुना। वो लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया था आडी बमन ने, फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। 1942 अ लव स्टोरी, अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर के, संगीत आडी बमन का, स्वर दे रही है कविता कृष्णमूर्ति।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब तक है जहां, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत, आवाज नीति मोहन और सोफिया अशरफ की, गीतकार गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान।

जब तक है जहाँ, अभी आपने इस फिल्म में नीति मोहन और सूफी अशरफ को सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पे आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय

जमीन आसमान। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम के अंतिम जो पेशकश है वो है मर्डर टू फिल्म से। मिथुन के लिखे, मिथुन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है सैयद कादरी ने, आवाजें मोहम्मद इरफान, अरिजीत और सैम भट्ट की।

0: इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: तराने नए

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा। हवा महल में रात 8 आप सुनेंगे हरीश दीक्षित के लिखी झलकी नया तजुर्बा, निर्देशन अनुराधा शर्मा का।

आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात 9 बजे। आज के फनकार आज ही कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। समय होगा रात 9:30। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

जागो सुबह हो गई, ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 5 बजे। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरडे। कल आप सुनेंगे इसकी 9वीं कड़ी। समय सुबह और शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। हम हेराही प्यार के कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर।

त्रिवेणी कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गानों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक आप नियमित सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कल का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर, समय सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर।

यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर, आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर आएंगे दिन में 1:00। सदाबहार नगमे सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। दिन में 3:00 सखी सहेली में बहनें सुनेंगी चर्चा साड़ियों का संसार, मेखला चादर असम की साड़ी, व्यंजन में साबुत अनाज के कुछ व्यंजन बताए जाएंगे, साथ ही पारिवारिक मिलन समारोह का महत्व इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। शाम 4:00 पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत कार्टूनिस्ट देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत प्रसारित की जाएगी। तराने नए पुराने आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे राग अनुराग, समय होगा शाम 7:45। रात 8:00 हवा महल में मदन मोहन खन्ना का लिखा और निर्देशित किया प्रहसन सुनिएगा मोहब्बत का इम्तिहान।

रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे मंदाकिनी जोशी, ढलती जाए रात 10:30 पर, और रंग तरंग प्रसारित करेंगे रात 11 बजे।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम संध्या रंजन। सबसे पहले सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की गाई ये भक्ति रचना, गीत संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम गीत गाता चल।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
2: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
1: जी जी जी।
2: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी,
1: सूक्ष्म लगाव।
2: अभी जो महत्वपूर्ण जो है, जो सब घराने में रहते लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है, वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण, उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर। और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है। ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
1: अच्छा।
2: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
1: जी, जी।
2: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
1: अच्छा।
2: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन उसका जो मध्यम है, मुल्तानी का पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
1: जी, जी, जी।
2: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
1: अच्छा।
2: ये सब बातें जो है उसका बहुत ही, इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है।
1: जी, जी, जी।
2: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है। हर स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी स्वर का प्रयोग राग के प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है।
1: जी, जी।
2: विलंबित आलाप, मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम

0: माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जिससे राग की पहचान हो जाती है और शुद्धता और भाव का संतुलन
1: जी।
0: किराना घराना केवल तकनीकी शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है
1: जी, जी।
0: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
1: वाह।
0: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते, पारदर्शकता रखते, वही आपका गाना
1: आपके
0: है,
1: गायन में भी वो दिखती।
0: ये शुद्धता होनी है।
1: वाँ, वाँ।
0: और एक प्रामाणिक ये
1: क्या बात?
0: गहन विकास का महत्व यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया है।
1: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
0: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं, यमन, तोड़ी, दरबारी कानरा, भैरव, मुल्तानी, पुरिया, ललत, बागेश्री, मियाँ के मल्हार, शुद्ध कल्याण, पुरिया धनश्री, ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है, जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है, उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही वाव है, ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मुल्तानी गा के सुनाऊं तो
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
0: मुल्तानी को हम पुरुष राग कहते हैं, उसके स्वर में जो पौरुष है और उनका जैसा है उसके चलन में ही मधुवंती जाता है, वो थोड़ा नजाकतदार राग है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का गाना है।
1: वाह वाह,
0: दया करो गिरधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हूँ वो हमारे गुरुजी पंडित प्रसाद सावकर के पास
0: जी,
1: कुछ
0: जी,
1: साल में हाँ। सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का तो आवाज की फिरक
0: अच्छा
1: बढ़ती है।
0: ओहो।
1: खास साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: ये खास साहब का, चलो सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: किताबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने गुलजार का लिखा गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की थी। फिल्म का नाम था सितारा। गुलजार का ही लिखा एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है खयाम ने। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

लीजिए सुनिए परदेस फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। या कार्यक्रमाचे सादर करते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए शब्बीर अहमद का लिखा और मीट ब्रॉस का संगीत बद्ध किया गीत, आवाज मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए इरशाद कामिल का लिखा गीत, आवाजें शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की फिल्म का नाम रांझणा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए अजय अतुल के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम सुपर 30।

अभी आपने मिथुन के गीत संगीत निर्देशन में कबीर सिंह का गीत सुना। कबीर सिंह फिल्म का गीत सुना, आवाज अरिजीत सिंह की थी। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 20.

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
3: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट आर्टिकल

0: 1970 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने इजाजत फिल्म में आशा भोसले को सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया किनारा फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है गुलजार ने।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सटाइल गायिका आशा भोसले पर। सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हाँ, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी माडगुड़कर, बाभ बोरकर, आरती प्रभु, शांता शेड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती है, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख दे।

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहने।

साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसी ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैनो करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ मेरा

सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल सामईन के जहन में आज भी। उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आबशार गजल।

आशा जी की आवाज के कायल उनकी आवाज के दीवानों को मिला था उसके बाद एक नजराना। एल्बम का नाम आपकी आशा।

की आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का, एल्बम का नाम जानम समझा करो।

80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आर डी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

कानों में शहद घोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का ये गाना।

सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली के साथ आशा भोसले ने एल्बम रिकॉर्ड किया था, हाँ मैं तुम्हारा हूँ।

1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूसकॉम के साथ आशा भोसले ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है, युवकों के एक संगीत समूह कोड रेड के साथ मिलकर आशा जी ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हों, भारत के हों या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहां है, वो है आशा भोसले का स्व अलंकृत स्वर। हम सब की प्यारी आशा ताई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के गाए इस गीत के द्वारा देते हैं अनंत शुभकामनाएं।

0: आशा भोसले पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आलेख, शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शिता

0: ऐसी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक

0: शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister